0: ये है डेटा सेंटर्स बनाने की होड़। दिखाएंगे एशिया के सबसे तेजी से उभरते डेटा सेंटर हब से बीबीसी की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं अदित मेहरा। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के टारगेट्स पर हमले तो रोक दिए हैं, मगर अब भी दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि इस समय उसकी अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से खोलने को लेकर बातचीत शुरू होने वाली है। शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले करने के अपने प्लान को कैंसिल कर दिया। उनका कहना था कि ऐसा ईरान के अनुरोध पर किया गया, लेकिन ईरान ने इससे इनकार किया। 5 महीने से चल रहे इस टकराव के दौरान ट्रंप कई बार बड़े हमलों की धमकी दे चुके हैं, लेकिन बाद में आखिरी समय पर उन्हें रोक भी चुके हैं। देखिए ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से क्या कहा।
1: सऊदी अरब, यूएई, कतर और ईरान सभी ने मुझसे ऐसा करने को कहा। हम कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार थे। इसी समय के आसपास बहुत बड़ा हमला होने वाला था, लेकिन जब हमारे सहयोगी उसे रोकने के लिए कहते हैं तो आपको रुक कर देखना पड़ता है। मुझे लगता है कि ऐसा समझौते की वजह से हुआ, हॉर्मुज को लेकर एक समझौता होगा, फिर ईरान के परमाणु कार्यक्रम या जिसे आप परमाणु निरस्त्रीकरण कह सकते हैं उस पर भी समझौता होगा। मैं इसे ईरान का डी न्यूक्लियराइजेशन कहता हूँ, इसलिए हमने अभी कार्रवाई रोकी हुई है। देखते हैं क्या होता है, हम जब चाहें कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन 3 मुख्य पक्षों ने हमसे ऐसा करने को कहा। ईरान ने भी बहुत जोर देकर हमसे कहा, उनका कहना था कि वो समझौता करना चाहते हैं।
0: इस बीच ईरान ने कहा कि वो एक समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, मगर यह समझौता ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले समुद्री ट्रैफिक के मैनेजमेंट को लेकर है। इस अहम समुद्री रास्ते के दोनों किनारों पर ईरान और ओमान का कंट्रोल है। बीबीसी संवाददाता योलान नेल बता रही हैं कि आगे क्या हो सकता है।
2: रविवार देर रात अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने सिर्फ इतना कहा कि ये बातचीत सोमवार दोपहर को होगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें कौन शामिल होगा। उन्होंने इतना जरूर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और ईरान के परमाणु कार्यक्रम दोनों को लेकर समझौते की रूपरेखा तय हो चुकी है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये समझौता कब तक हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी के अरब देशों के सहयोगियों ने उन्हें ईरान पर कड़ा हमला करने की अपनी ताजा धमकी रोकने के लिए राजी किया। उन्होंने खास तौर पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ हुई अपनी बातचीत का जिक्र किया। हमारी जानकारी के मुताबिक अमेरिका के सहयोगी और मीडिएटर्स जून में अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक एमओयू था, वो अंतिम समझौता नहीं था, लेकिन उसका मकसद अंतिम समझौते का रास्ता तैयार करना था।
0: इस जंग के तहत लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच चल रही जंग की भारी कीमत वहां के पैरामेडिक्स और इमरजेंसी वर्कर्स को चुकानी पड़ी है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मार्च में शुरू हुई लड़ाई में अब तक 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बीबीसी अरबी सेवा की कैरिन तौरबे ने एक ऐसे सिविल डिफेंस वर्कर से बात की जो कि पिछले 20 सालों में हुए संघर्षों के दौरान फ्रंट लाइन पर रहे और निजी नुकसान उन्हें उठाना पड़ा।
3: 2006 से 2026 तक 20 सालों में हिजबुल्ला और इसराइल के बीच तबाही मचाने वाले 3 युद्ध हुए और सब में वही त्रासदी और खौफनाक मंजर दिखे। 12 जुलाई 2006 लेबनान में जंग तब शुरू हुई जब हिजबुल्ला ने इसराइली सैनिकों को मारा और बंधक बनाया। मंशा थी कि इन सैनिकों को इसराइल के कब्जे में मौजूद लेबनानी और अरब कैदियों की रिहाई के बदले छोड़ा जाएगा। उस वक्त अली सैफी अलद्दीन 19 साल के थे जो लेबनान के टायर में सिविल डिफेंस वॉलंटियर थे। टायर में लोगों ने जंग से बचने के लिए शरण ली हुई थी, उनमें अली की बीवी और बच्ची लिन भी थे। जंग के चौथे दिन इसराइली सेना ने टायर में मौजूद उस इमारत पर बम गिराया जहां सिविल डिफेंस का सेंटर था। कहा गया कि उन्होंने हमले के जरिए शहर में मौजूद हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया। अली ने जोर देकर कहा कि उस इमारत में सिर्फ सिविल डिफेंस के कर्मचारी और आम लोग थे।
4: मैंने पाया कि मेरी बच्ची मेरी बीवी की बाहों में है। बम का टुकड़ा मेरी बीवी की बाह में लगा, ऐसा लगा कि वो कट गया। दूसरा बम का टुकड़ा मेरी बेटी के गले में लगा, वो दोनों जल गए थे। मैंने अपनी बेटी को उठाया क्योंकि उसकी पल्स चल रही थी, वो बुरी तरह जल चुकी थी और उसे गंभीर चोटें आई थी।
3: लिन बच नहीं पाई, अगर वो जिंदा होती तो वो 21 साल की होती। 20 साल बाद हिजबुल्ला और इसराइल के बीच जंग में अली को एक और दर्दनाक नुकसान झेलना पड़ा। इस जंग को 2023 में चिंगारी

0: थी हिजबुल्ला ने, जिसने गजा के समर्थन में हमले किए। संघर्ष विराम पर 2024 में सहमति बन गई थी, लेकिन इसराइल लेबनान पर हमले करता रहा। फिर मार्च 2026 में हिजबुल्ला ने इसराइली हमलों और ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के जवाब में उत्तरी इसराइल पर रॉकेट लॉन्च किए। उस वक्त अली टायर शहर में सिविल डिफेंस सेंटर के डायरेक्टर बन चुके थे। अप्रैल के आखिर में दक्षिणी लेबनान पर इसराइली हमलों के बाद वो और दूसरे सिविल डिफेंस पैरामेडिक्स एक और रेस्क्यू मिशन पर निकले। उन्होंने एक घायल को निकाला, लेकिन 3 पैरामेडिक्स की मौत हो गई।
1: हमने एक घायल शख्स को बाहर निकाला, हम उसे ले जा रहे थे तभी हादी और हुसैन ने कहा कि जाओ और एम्बुलेंस को पास ले आओ। मैंने उनकी ओर देखा, वो अभी भी घायल शख्स को उठाए हुए थे और मैं एम्बुलेंस लेने गया। मैं एम्बुलेंस तक पहुंचा और अंदर बैठ गया। मैंने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा, अचानक मुझे वहां सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। एक मिसाइल आई और सीधे स्ट्रेचर के बीच में गिरी, बस वहीं उस पर सब कुछ खत्म हो गया।
0: इसराइली सेना ने बिना सबूत दिए हुए कहा कि उन्होंने सैनिकों के पास काम कर रहे एक हिजबुल्ला कमांडर को निशाना बनाया। 2006 के 20 साल बाद हथियार अब और ज्यादा आधुनिक हैं और उनसे जो खौफनाक तबाही होती है उसे सोच पाना भी मुश्किल है।
1: जंग तो जंग होती है, लेकिन 2006 और 2026 में बहुत बड़ा अंतर है। इस जंग में हो रहे हमलों को बयान नहीं किया जा सकता। रॉकेट्स के बारे में मैं नहीं बता सकता, उनकी ताकत को मैं समझा नहीं सकता।
0: अली ने जो दोनों त्रासदियां निजी तौर पर झेली और उसके साथ कई भयानक मंजर जो उन्होंने अपने काम के वक्त देखे, वो इस देश के और कई पीढ़ियों के दर्द को दिखाते हैं। बीबीसी संवाददाता कैरिन तोरबॉय की रिपोर्ट।
2: रुख ग्रीस का, जहां जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। ग्रीस के पश्चिमी इलाके में राजधानी एथेंस के नजदीक वाइल्ड फायर को बुझाने के अभियान के दौरान हवा में 2 हेलीकॉप्टरों की टक्कर हो गई, जिसमें क्रू के 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों हेलीकॉप्टर्स साथा इलाके में गिर गए। देखिए बीबीसी संवाददाता सारा रेंसफर्ड की रिपोर्ट।
3: एथेंस से पश्चिम की तरफ 2 हेलीकॉप्टर जंगल की आग बुझाने के लिए भेजे गए थे, तभी एक हेलीकॉप्टर दूसरे की तरफ मुड़ गया और दोनों आपस में टकरा गए। रेस्क्यू टीम तुरंत हादसे वाली जगह पहुंची, जहां एक हेलीकॉप्टर जमीन पर गिर चुका था। उसमें सवार क्रू के 2 सदस्यों की मौत हो गई। वहीं दूसरे हेलीकॉप्टर में ब्रिटिश पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कराई। वो और उनके ग्रीक कलीग सही सलामत हैं। इस समय ग्रीस जंगल की भीषण आग की चपेट में है। यहाँ पहले भी जंगल में आग लगती रही है, लेकिन इस बार तूफानी रफ्तार की हवाएं हालात और बिगाड़ रही हैं। तेज हवाएं आग को और भड़का रही हैं और ऊपर से पानी गिराने वाले एयरक्राफ्ट्स के लिए भी उड़ान को खतरनाक बना रही हैं। फिलहाल ये साफ नहीं है कि इस हादसे में तेज हवा की कोई भूमिका थी या नहीं। जिन बेल हेलीकॉप्टर की टक्कर हुई थी, इस हादसे की जांच पूरी होने तक वैसे सभी हेलीकॉप्टरों की उड़ान रोक दी गई है। हालांकि इससे कुछ घंटे पहले ही प्रधानमंत्री ने खुद ऐसी उड़ानों के खतरे का जिक्र किया था। उन्होंने इस हादसे पर शोक जताया है, जिसमें बेहद मुश्किल परिस्थितियों में फ्रंट लाइन पर ड्यूटी कर रहे 2 फायर फाइटर्स की जान चली गई। उन्होंने कहा कि पूरा ग्रीस गहरे दुख में है। शुक्रवार को समंदर से लगे तटीय इलाके पोर्टो गर्मेनो और आसपास के गांव से लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस घर घर जाकर जो लोग अब भी वहीं हैं उन्हें आवाज दे रही थी। उनके जानवरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा था। ये वॉलंटियर फायर फाइटर बताते हैं कि आग बेहद तेजी से फैली। वो कह रहे हैं कि दांते के इन्फर्नो में नरक का जैसा जिक्र है, मंजर बिल्कुल वैसा था। पहाड़ों से उठती एथेंस की तरफ बढ़ती आग की लपटों पर काबू पाने के लिए सैकड़ों फायर फाइटर्स को तैनात किया गया है। क्रीट, कैफलोनिया और टूरिस्ट्स के बीच मशहूर दूसरे आइलैंड्स पर भी जंगल में आग लगी हुई है। हवा की रफ्तार कुछ कम हुई है, लेकिन हालात अब भी काफी चुनौती भरे हैं। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिन बेहद मुश्किल हो सकते हैं। बीबीसी संवाददाता सारा रेंसफर्ड की रिपोर्ट।
2: AI रेवोल्यूशन के लिए दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियां अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। एशिया में इस वजह से डेटा सेंटर बनाने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इसको बनाने की होड़ के बीच इसके असर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बीबीसी संवाददाता सुरंजना तिवारी मलेशिया के सबसे तेजी से उभरते डेटा सेंटर हब गई। देखिए उनकी रिपोर्ट।

इसको पढ़ना पा डेटा सेंटर्स वाले पासे जाइए ते देखने की कोशिश करिए, बट नाल दी नाल तुहानू भी दस दिए कि भी डेटा सेंटर जिथे अपना काम कर रहे ने लोकल अलबर्टा ने भी काफी फेवरेबल जगह मनिया जा रहा है कि भी इत्थे भी काफी डेटा सेंटर्स की एप्लीकेशन चाहिए। कुछ एक ऑलरेडी लग चुके हैं, कुछ एक कैंसल भी हो गए हैं। मैं उससे मेयर के नाल गलबात कर रहा थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने दस्या कि भी इत्थे भी जो डाटा सेंटर आ रहा है तो कैंसल हुंदा लग रहा है। हुण अगे कोई गलबात हाले सोफा नजर नहीं आ रही। इसे तरीके नाल होर कई डाटा सेंटर जिहड़े ने आ रहे ने, सब तो ज्यादा जिहड़ा बिलियनस ऑफ डॉलर जिहड़े ने वह मैटा वालों भी इनवैसट किए जा रहे हैं अलबर्टा के। सो वह भी एक वड्डी जिहड़ी है उपलब्धि लग रही है गवर्नमेंट नूं। दूजे पास जी ओपोजिशन या होर जो लोग ने लोकल वो कहने वाले भी ये पानी की यूज बड़ी होंगी है कोई डाटा सेंटर के नाल साडा। जे तुसीं बिलियन लाते हो तो बिलियन जिहड़े ने वह कोनिया जॉब या अपरचुनिटी नहीं क्रिएट करता, क्योंकि जॉब्स तो बहुत थोड़िया होंगे ने। डाटा सेंटर बेसिकली एक कंप्यूटर ही है जो आप कही, तो हूँ कंप्यूटर के मैनेज करने वास्ते डाटा जो तुम बड़े हो किन्ने लोगी किन्ना क काम वे कर सकते हैं, जिन्ना क जे उस पैसे ना कोई होर इंडस्ट्री के उत्ते इनवैसट किया जाए तो शायद ज्यादा जॉब्स जी निकल सकती हैं। एक होर आर्टिकल मैं देख रहा जिद मैटा का ही आर्टिकल से भी इन्होंने 8000 लोग जोड़े ने कढ़ते, दूजे पास कहें भी आप इन्ने बिलियन डॉलर जो इनवैसट कर रहे हैं डाटा सेंटर से, तो दूजे पास हजार ही जो इंपलॉई ने कढ़े जा रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी अडोप्ट करना, टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, सारा कुछ इंपोर्टेंट है, बट जॉब से उत्ते जरा फोकस भी रखना चाहिए। नहीं तो हौली हौली करते हैं। एलन मस्क ने जो ऑलरेडी कहता भी 3 साल होर वेट करो, उस तो बाद जरा जॉब्स वगैरह जड़िया ने हवा होंगे नजर आनी आने वाले टाइम जॉब जो रूटीन च चल रही सी वो जॉब्स हूँ अगे नहीं नजर आनी। जिदे करके जो यहोजी जॉब्स नहीं नजर आनी तो मतलब फिर तुम अपनी जॉब्स तो बचाना किता या बचना किता, ए बारे भी एक गलबात की गई, क्योंकि जे तुम अपनी जॉब्स न बचाना चाहते हो या अपने आप सिक्योर करना चाहते हो, दो तीन चीजा जड़िया ने बड़िया खास है। एक तो ए आई की जो आप गल करते हैं, ए आई के नाल चलना सीखीए, ए आई सीखना शुरू करिए, वो तो वह ए आई द इस्तेमाल जरा आप अपनी जिंदगी दे विच करना शुरू करिए, क्योंकि ये ओही चीज है जी हमें वापस नहीं आनी जानी किसी पास, बट इन्हें बड़ी तेजी के नाल वधना अगे भी आने वाले टाइम च भी जिदा तुम देखिए भी थोड़े दिन किनिया जॉब्स से किन्ना कुछ जो दुनिया का चेंज हो गया सिस्टम सिर्फ ए आई के आने के नाल ही। प्लस कुछ ऐसे बिजनेस जेडे ए आई के नाल रिप्लेस नहीं किए जा सकते, जिड़ी चीजा आप रिप्लेस नहीं कर सकते, वे वर्क करने की लड़ है जिदा ए आई के उत्ते इंपैक्ट नहीं पैना। हूँ जो आप डाटा सेंटर की या डिवेलपर की या डिजाइनर की या इदा के लोगों की गला पता करते हैं तो वह सिर्फ उही लोग बजेंगे जिन्हों के उत्ते ए आई का इंपैक्ट नहीं है, तो जेडे नहीं ध्यान करे या नहीं चलन गए उन्होंने जॉब्स में खतरा जरा लगातार बनया रहेगा, तो जल्दी वह जो जॉब्स ने मार्केट चो हट जाएगी। तीजी वड्डी गल कि भी इस टाइम के उत्ते अपने एसेट जोड़े ने उन्होंने सिक्योर करो, वर्त तो वो भी ते हाथ च आ सकता है उन्होंने कंट्रोल करके रखो, अपने खर्चों अपन चीजा पता नहीं कि चीज किधरले पास जानी है, तो लोग जड़े ने हैरानी परेशानी के घूमते जाने। सो इस करके अपने आप में थोड़ा जा सॉलिड रखने की कोशिश करो ताकि अपनी लाइफ में जरा वधिया तरीके किया जा सके। हम जी आप गलबात सुनी जा रहे हैं जो डाटा सेंटर के बारे गलबात की जा रही है, क्योंकि एशिया के नो डाउट बड़ी तेजी के बढ़ रहा है। नॉर्थ अमेरिका च भी 4000 तो वध डाटा सेंटर जोड़े ने है यूएस के अंदर, कैनेडा के भी काफी सैकड़े डाटा सेंटर जोड़े ऑलरेडी एग्जिस्ट ने, तो बाकी जोड़े होर नवी एप्लीकेशन जड़िया ने काफी पईया, क्योंकि उन्होंने पता है कि ये डाटा हूँ इन्ना कुछ आप यूज करते हैं इन इनफॉर्मेशन डेली बेसिस से, कई लोग जड़े ने पहला तो कुछ कुछ खास ही मीडिया के लोग जोड़े है वह या कोई स्पैशल इनफ्लुएंसर जोड़े से डाटा लोड करते पाते हूँ जोड़ा डाटा है वह कितना कितने से स्टोर होना ही कितना कितने तो उन्हें रहना ही है जितों तुम उन्होंने क्विकली पुल कर सकते हो। सो इस करके रखने वास्ते बहुत डाटा की जगह जी चाहिए है, तो जे आप समझिए भी यह डाटा जोड़ा है वह यूज करके कंपनियां जड़िया ने कमादिया जा रही ने, इस तरह की भी गल नहीं, पैसा जरा बर्न करते जा रहे हैं, बिलियनस ऑफ डॉलर जड़े ने हर साल

0: ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਆਲਟਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਨ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਨਵੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਲਟਮੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਟੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
1: आप एआई को जो प्रॉम्प्ट देते हैं, जिस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, जो फिल्म स्ट्रीम करते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोसेस्ड होती है। और अब ऐसी बिल्डिंग्स में ये काम ज्यादा हो रहा है। एआई जैसे जैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, वैसे वैसे कंप्यूटिंग पावर की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। सबसे तेजी से उभरते डेटा सेंटर हब में से एक है मलेशिया के जोहोर में।
2: This whole area used to be forest.
1: ये पूरा इलाका कभी जंगलों और बागानों से भरा हुआ था, लेकिन अब जहाँ तक नजर जाती है वहाँ काम कर रहे डेटा सेंटर्स दिखते हैं, या फिर वो डेटा सेंटर्स जो अब बन रहे हैं। यहाँ खड़े होकर लगता है कि डिजिटल इकोनॉमी का भविष्य एशिया में बनाया जा रहा है।
2: Is being built here in Asia.
1: प्रिंसटन डिजिटल ग्रुप का कहना है कि दुनिया भर में बढ़ती एआई की मांग को पूरा करने के लिए एशिया की स्थिति मजबूत है।
3: The large part of the Gen AI
4: का बड़ा हिस्सा, जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी कहा जाता है, वो ट्रेनिंग मॉडल अमेरिका में बनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर बड़ी AI टेक कंपनियां वहीं पर हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि इन मॉडल्स को अलग अलग देशों और बाजारों की जरूरतों के हिसाब से बनाना पड़ता है। इस कारण इन देशों में लोकल लैंग्वेज और लोकल कंटेंट के साथ लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी जनरेटिव AI की मांग तेजी से बढ़ रही है। यही कारण है कि अब इस तरह का काम तेजी से एशिया की ओर बढ़ रहा है।
1: जिन जगहों पर आपकी कंपनी बिजनेस बढ़ा रही है, वहाँ आपकी कंपनी और कस्टमर को क्या फायदा होता है?
4: मुझे लगता है कि पिछले 2 सालों में बड़ा बदलाव आया है। 5 साल पहले मंत्री और सरकारें डेटा सेंटर की अहमियत उतना नहीं समझती थी, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया है कि AI के लिए डेटा सेंटर जरूरी है। डेटा सेंटर बनाने के लिए जमीन, बिजली और दूसरे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना पड़ता है। इस कारण सरकारें और मंत्री AI के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम कर रहे हैं।
1: डेटा सेंटर में बहुत ज्यादा बिजली की खपत होती है, ऐसे में आप इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं?
4: आप मलेशिया की बात करें तो यहाँ बिजली की कोई कमी नहीं है। भारत के कुछ हिस्सों, खासकर पश्चिमी भारत में ग्रीन पावर है, तो इस क्षेत्र में हमें अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। अगर आप मेलबर्न, सिडनी, जोहोर, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद को देखें तो ये बड़े डेटा सेंटर क्लस्टर हैं। जापान में भी अब डेटा सेंटर तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ न्यूक्लियर पावर के फिर से आने से डेटा सेंटरों को भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है।
1: AI में हो रही भारी निवेश को लेकर कई तरह की चिंताएं जताई जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ बबल है?
4: मुझे लगता है कि AI के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निवेश हो रहा है वो पूरी तरह से सही है। हमने पहले भी ऐसे बुनियादी ढांचे को इंटरनेट की ग्रोथ की अलग अलग स्टेजेस में बढ़ते देखा है। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो उतार चढ़ाव आते हैं। ये किसी भी नई तकनीक के दौर का हिस्सा होता है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि एशिया पैसिफिक में AI और क्लाउड सर्विस के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग आगे भी लगातार बढ़ती रहेगी।
1: BBC संवाददाता सुरंजना तिवारी की रिपोर्ट।
5: अंटार्कटिका में मिले डायनासोर के उस फॉसिल की पहचान हो गई है जिसे पहली बार 1985 में खोजा गया था। ये धरती पर चलने वाला अब तक का सबसे बड़ा जीव था। देखिए BBC की साइंस एडिटर रेबेका मोरेल की ये रिपोर्ट।
6: तो ये हमारा मेन जियोलॉजी स्टोर है, जहां हम अंटार्कटिका से लाए पत्थर और फॉसिल्स रखते हैं।
7: कैम्ब्रिज में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के स्टोर में बर्फीले महाद्वीप से इकट्ठा किए गए

0: हजारों पत्थरों और फॉसिल्स में ऐसा रहस्य छिपा था जिसे सुलझाने में 40 साल लग गए।
1: जब आप ये सोचना शुरू करते हैं कि इस दराज में क्या रखा है, तब कभी कभी आपको कोई ऐसी चीज मिल जाती है और आप सोचते हैं, अरे ये तो दिलचस्प लग रही है।
0: मार्क इवांस की नजर इस साधारण से दिखने वाले जीवाश्म पर पड़ी। इसे 1985 में अंटार्कटिका में चले अभियान के तहत जमा किया गया था, लेकिन कई सालों तक ये छिपा रहा। इसकी खोज फील्ड नोटबुक में दर्ज की गई थी।
1: हैरानी की बात है कि ये नोट्स काफी साफ सुथरे ढंग से लिखे हुए हैं, जबकि ये उसी खुली पहाड़ी ढलान पर लिखे गए थे जहाँ कड़ाके की ठंड थी और तेज हवा भी चल रही थी। ये 9 दिसंबर की एंट्री है। यहाँ जीवाश्म वैज्ञानिक माइक थॉमसन ने अलग अलग फॉसिल्स का रिकॉर्ड लिखा है। नीचे उन्होंने उसका बहुत अच्छा स्केच भी बनाया है और लिखा है, एक बड़े रेंगने वाले जीव की रीढ़ की हड्डी का हिस्सा।
0: लेकिन उस समय उसकी पहचान बस इतनी ही हो पाई थी। फिर करीब 40 साल बाद डॉक्टर इवांस ने पता लगाया कि ये डायनासोर की हड्डी थी। ये फॉसिल इन्हीं में से एक टाइटेनोसोर का है, जो सबसे बड़ा डायनासोर था। ये फुल स्केल कास्ट यूके की नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम से कुछ समय पहले लिया गया था, जो पीटरबरो कैथेड्रल में प्रदर्शनी के लिए लगा है। ये विशाल टाइटेनोसोर लगभग 300 हड्डियों से बना है, और ये फॉसिल जो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है, जो पूंछ वाले हिस्से से मिली है। जिस टाइटेनोसोर का ये फॉसिल था वो बहुत छोटा था, लगभग 7 मीटर लंबा, ना कि 37 मीटर। इससे पता चलता है कि ये या तो कोई युवा डायनासोर था या फिर बॉनी प्रजाति का। ये फॉसिल लेट क्रिटेशियस काल का है, जब अंटार्कटिका आज के मुकाबले बहुत अलग था। तब ये घने जंगलों और टाइटेनोसोर के लिए खाने की चीजों से भरा था।
2: भले ही ये देखने में बहुत खास न लगे, लेकिन असल में इसका आकार बहुत अनोखा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक सिरे पर उस जोड़ का सॉकेट है और दूसरे सिरे पर बॉल, और ये खास बातें सिर्फ इसी तरह के डायनासोर में पाई जाती है। इसे देखते ही मुझे पता चल गया कि हम किस चीज पर काम कर रहे हैं।
0: अब तक टाइटेनोसोर की 100 से ज्यादा प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं।
2: अब हमें मालूम है कि इनका आकार काफी अलग अलग होता था। कुछ सिर्फ 5 से 6 मीटर लंबे होते थे, जबकि कुछ बड़े टाइटेनोसोर करीब 35 मीटर तक लंबे होते थे। उनका वजन 60 टन या उससे भी ज्यादा होता था, यानी कि करीब 10 से 12 अफ्रीकी हाथियों के बराबर। ये सारे पौधे खाते थे और चारों पैरों पर चलते थे। गर्दन लंबी होती थी ताकि ऊंचे पेड़ों तक पहुंच सकें। बैलेंस बनाने के लिए इनकी पूंछ लंबी होती थी।
0: अंटार्कटिका में फिर से मिला ये फॉसिल 8 करोड़ साल पहले रहने वाले टाइटेनोसोर की पहेली को सुलझाने में एक अहम कदम है। बीबीसी संवाददाता रेबेका मॉरल की रिपोर्ट।
3: बीबीसी दुनिया में आज के लिए इतना ही, और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस का नया ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। स्क्रीन पर
4: बिल्कुल जी, ये सीधी बीबीसी ने कुछ खबर सुनी थे, कुछ ऑलरेडी गल शेयर कर चुके हैं कि किस तरीके से हालात बन रहे हैं। दूजे पास ट्रंप दलों तो शुरुआत की ट्रंप के कहते बैंक ऑफ अमेरिका ने वार्न किया कि ट्रंप की जी फेड चेयर है वह लूज होंगी जा रही है, क्रेडिबिलिटी करती जा रही है। आने वाले इलेक्शन जोड़े ने मिड टर्म इलेक्शन के झटका जरा लग सकता है। ये ना ये भी मनिया जा रहा है भी जड़िया ट्रंप का जरा टैक्स ऑडिट जरा वह भी हो सकता है। वंस अगेन चर्चा चलन लग पी, इंपीचमेंट दी चर्चा चलन लग पी, क्योंकि ट्रंप ने जिन्होंने बिट्रेयल ट्रिगर सीजन मीटिंग जी एक्सलाइज दी फिर तो होनी शुरू हो गई। तुम्हें पता भी इलेक्शन मिड टर्म इलेक्शन होंगे उ पोलिटिकल अर्थक्वेक जरा च आ सद कंजरवेटिव न्यूज पेपर पैनिक ऑफ अ रियल पॉसिबिलिटी ट्रंप विल बी इंपीच्ड। सो इस तरह जेडे हैडिंग्स के नाल हुण वंस अगेन झूठ फेर की गलबात कर ही ली आपां, बट ट्रंप के जेडे अंदर के बंदे भी ने टीम वाले भी वह भी किनारा करना शुरू कर चुके हैं। पर कई बार इन्होंने लोगों का पता नहीं लगता कदों तक की करते जाएंगे, बट फिलहाल जेडिया गल्लां सामने आ रही ने इस तरह की न्यूज जेडिया ने सामने आ रही। ये प्रोग्राम तुम दस दिए भी मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे शाम 7 to 8 संडे 1 बजे तो लैके 5 बजे तक समझो। अज का प्रोग्राम जरा हमेशा की तरह चलेगा 8 बजे तक, थोड़ा समा सा होर बचा तो उधरले पासे भी चलते चलते आप अपनी गलत जी जारी रखा जी। तो जे तुम अपने बिजनेस वास्ते कोई वधिया वैबसाइट बनाना चाहते हो या बिजनेस वास्ते सोशल मीडिया का कोई काम कार करवाना चाहते हो साडे नाल जरूर संपर्क कर सकते हो 4034400202। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ।

0: ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਚਾੜਨ ਲਈ ਥੱਬਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ
1: ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਟਰੱਕ ਓਨਰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਨਾਲ 587-832-1208 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬੈਸਟ ਟਰੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 587-832-1208
2: ਨਮਸਕਾਰ ਸਲਾਮ
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਯਾਲੀ ਮਦਦ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਟੂ ਕੈਲਗਰੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ
2: ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰ ਸੰਗਮ ਓਨਲੀ ਔਨ 94.7 FM ਪਰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਪਕਾ ਹੋਸਟ ਆਪਕਾ ਦੋਸਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਾੜ ਆਪ ਸਭ ਕਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਆਸ਼ਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਮਸਤ ਹੋਂਗੇ ਵਿਅਸਤ ਹੋਂਗੇ ਔਰ ਸਵਸਥ ਹੋਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਜ दांत में बहुत प्रॉब्लम है तो अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो मैं उसके लिए पहले से ही माफी चाहता हूं दोस्तों हमारे देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल और हमारे देश का सबसे बड़ा एक जो दिन है मनाने का हमें मौका मिलता है साल में एक बार और वो है हमारी आजादी 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और उसके बाद से हम लोग हर साल ये दिन जहां पे भी हो दुनिया में हर हिंदुस्तानी इसको मनाता है और बहुत गौरव की बात है कि हमारे इस अमेजिंग सिटी में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि मिलजुल कर ये प्रोग्राम को और इस दिन को सेलिब्रेट करती हैं और इकट्ठा होकर इस दिन को मनाया जाता है इंडिया ये फेस्ट इस इवेंट का नाम है और इस दिन को मनाने के लिए बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जैसे मैं कह सकता हूं 25 से ऊपर जो कि इकट्ठे मिलकर इस दिन को मना रही हैं और इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर साथिया मिस्टर गौरव और मिस्टर भावेश जो कि हमें बताएंगे कि इस इंडिया ये फेस्ट में क्या होने वाला है एंड हमें बड़े हमारे बड़े गौरव की बात है कि हम रेडियो सुरसंगम वी आर प्राउड मीडिया पार्टनर्स फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग प्रोग्राम तो आइए मिलकर इनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है जेंटलमैन वेलकम टू द शो आपका बहुत बहुत स्वागत
4: थैंक यू सो मच मौका देने के लिए हमें
5: बहुत बहुत शुक्रिया
2: सर ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ आए और हमारे रेडियो के थ्रू अपनी आवाज हमारे लिसनर्स और जो भी हमें सुनता है उन तक पहुंचा रहे हैं तो सबसे पहले तो गौरव जी आपसे शुरू करते हैं कि इंडिया ये फेस्ट ये नाम कुछ बताएंगे कैसे सूझा या किसने सुझाया क्योंकि बहुत ही एक यू नो कानों को बड़ा अच्छा लगता है कि इंडिया ये आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ राइट
4: हाँ जी तो इंडिया फेस्ट जो हमारा है हमने इसको एक फेस्ट का नाम दिया है 15 अगस्त सभी जानते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि बाकी जितनी भी कम्युनिटी है नॉट सिर्फ अपनी इंडियन कम्युनिटी सारी कम्युनिटी आए तो उसको हमने फेस्ट से जोड़ दिया है तो इसलिए इंडिया फेस्ट कर दिया है हमने उसको और ये पूरा सुबह से शाम तक का हमारा जैसे मेला होता है इंडिया में उस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं और इंडिया बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है बहुत सारी भाषाएं हैं बहुत सारे स्टेट हैं बहुत सारी क्विजींस हैं तो ये एक सेलिब्रेशन ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ झंडा रोहण किया और उसके बाद हमने ज्यादा कुछ नहीं किया यहाँ पे हम अपना कल्चर भी शोकेस करते हैं
2: ऑफ कोर्स
4: तो इसमें अपने जितने भी गुजराती मराठी तेलुगु तमिल यूपी जितने भी हमारी स्टेट्स हैं सब आते हैं मिलते हैं और उस फेस्ट की तरह मनाते हैं तो हमने इसीलिए इसका नाम रखा है इंडिया फेस्ट और ये 6वां साल है हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं
2: जी।
4: और अब काफी बड़ी जगह पे होता है बड़ी लोकेशन है ज्यादा लोग आते हैं लॉट 6 में करते हैं हम लोग इसको तो इस ये हम इन आजादी जो इंडिया की इसको सेलिब्रेट करने के लिए इंडी फेस्ट नाम रखा है हमने इसका
2: क्या बात है दोस्तों भारत में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस हमारे हिंदुस्तान में बोली जाती हैं तो इकट्ठे मिलकर इस दिन को मनाना शो करता है कि हम लोग यूनाइटेड हैं हम लोग एक हैं और कोई भी दुनिया की ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती मैं आता हूं भावेश जी पे भावेश जी बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम में तो आप बताइए कि आप इस प्रोग्राम से किस तरह से जुड़े
6: या तो ये करीब 4 साल

0: 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, सारे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अलग अलग स्टेट से या तो रिलीजन कल्चर से ताल्लुकात रखते हैं
1: जी,
0: वो इकट्ठा हुआ और डिसाइड किया कि ऐसा कुछ करते हैं जो हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर सके। जैसे आपने बताया 15 अगस्त इज दैट वन डे विच एनी इंडियन इनसाइड और आउटसाइड इंडिया एनीवेयर दे कैन सेलिब्रेट विदाउट एनी बार ऑफ रिलीजन कल्चर और बाउंड्रीज, राइट
1: जी।
0: सो ये शुरुआत हुई 4 साल पहले, गुजराती मंडल ने शुरुआत किया, फिर मराठी मंडल ने लीड किया, राणा ने किया, इस बार गौरव जी इंडियन से वाईवाईसी लीड कर रहे
1: जी।
0: हर साल कोई ना कोई स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन आगे आता है लीड करने के लिए
1: जी,
0: एंड वी ऑल वर्क टूगेदर
1: जी
0: मेक इट सक्सेसफुल इवेंट।
1: क्या बात है साध्या जी, एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम में। और किस तरह से चल रही है आपकी बेटी की तैयारी?
2: बहुत बढ़िया, थैंक यू आपके इंटरव्यू के लिए। एक्चुअली या जैसे बताते लास्ट वीक एक्चुअली, तो अभी हमने उसका जो स्केटिंग क्लासेस जो है अभी हमने शुरू कर दिए। हर रविवार सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक वो ट्रेनिंग चालू है।
1: क्या बात,
2: एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट 24 kids दे हैव एनरोल्ड फॉर इट।
1: क्या बात है, तो अगेन भारत का नाम ऊपर जा रहा है सर।
2: डेफिनेटली सर, जो कोशिश वही जारी है, डेफिनेटली ये हम जारी रखेंगे उसका।
1: क्या बात है, तो आप इस फेस्ट से कैसे जुड़े हैं सर?
2: या आई थिंक जैसे बता रहे थे नो, दिस इज समथिंग लाइक यू नो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे हम भले अलग अलग भाषा बोलेंगे, अलग इंडिया में अलग अलग लोग प्रांत से आएंगे
1: जी,
2: लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली ये इंडिया का त्योहार है, दिस इज फेस्टिवल ऑफ इंडिया
1: जी।
2: जैसे हम त्योहार सब घर में सब मिलके बनाएंगे
1: जी,
2: वैसे इसी फेस्टिवल को भी यहाँ पे कैलगरी पे जितने भी आई थिंक अलग अलग कम्युनिटी थे, ओडिया, तेलुगु, तमिल, पंजाबी जो भी हो, सब मिलकर इस त्योहार को मिलकर बनाएंगे। तो मैं आई थिंक यू नो गौरव जी बता रहे थे मेरे को, आई थिंक आई स्पीक तेलुगु बट आई थिंक नो आई बॉर्न बॉर्न अप इन ओडिशा
1: जी।
2: सो इसी चीज है, मैं ओडिशा का और तेलुगु का दोनों रिप्रेजेंट करते हुए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अपनी दूसरी भाई उनके साथ भी, सो सब मिलके इस त्योहार को मनाएंगे। सो इस तरह मैं यू नो आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी आई थिंक यू नो ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस। आई थिंक यू नो वी वॉन्टेड टू मेक इट टूगेदर।
1: क्या बात है गौरव जी, जैसे कि भवेश जी और साथी जी बोल रहे हैं कि एक त्योहार है, 15 अगस्त हमारे लिए एक त्योहार से भी बड़ी चीज है। मैं इसको क्योंकि एक रिलीजन या एक स्टेट से नहीं जोड़ता, हम अपने अपने रिलीजन में अपने अपने त्योहार बनाते हैं, दिवाली हो, ईद हो, वैसाखी हो, पोंगल हो, अलग अलग जगहों पे अलग अलग त्योहार बनाए जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा त्योहार है जो आपको इकट्ठा करता है ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, राइट इंडिया के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया के अंदर जो बोली जाती हैं, उसके अलावा कितने ही डायलैक्ट्स हैं, कितने ही उनके वेरिएशंस हैं जो बोले जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा दिन है, आप कोई भी भाषा बोलते हो, कोई भी रिलीजन को आप बिलीव करते हो या उसको मानते हो, लेकिन ये एक ऐसा दिन है जो सबको कनेक्ट करता है,
3: एक हो जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी, तो इस प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है थोड़ा सा इसके बारे में बताइए।
3: तो ये जो प्रोग्राम सर होगा हमारा, तो लोकेशन इसकी लॉट 6 में है
1: जी। लॉट 6 जो है ये सिटी का पार्किंग लॉट है जो कि कैंसिंगटन और हमारे डाउनटाउन को जोड़ता है, और वो पुल के पास में पार्किंग लॉट 9006 जिसका एड्रेस 3118 स्ट्रीट साउथ वेस्ट है जी। जी
3: लॉट 6 3118 स्ट्रीट साउथ वेस्ट में है, और बहुत कन्वीनियंट है अगर आप कार से आ रहे हैं, कार से आई है, या फिर अपना एलआरटी लेके आए, एलआरटी लेके भी आए, तो आई रिकमेंड के एलआरटी लेके आए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
3: एंजॉय करते हुए, और उस दिन अपना वीकेंड है, सैटरडे पड़ रहा है लकली
1: जी।
3: तो अभी सर वहां पे बहुत सारे इंतजाम किए हैं हमने, तो जैसे कि आपका कल्चरल एक्टिविटीज हैं, तो सारे स्टेट्स हमारे हैं, हर एक स्टेट्स का परफॉर्मेंस वहां पे है, जैसे आपका हर तरह के भरतनाट्यम भी मिलेगा आपको, केरला का डांस मिलेगा, फोक मिलेगा, राजस्थानी डांस मिलेगा, फिर आपका उड़ीसा का भी मिलेगा, तो उस तरह के सारे परफॉर्मेंस वहां पे होंगी। फिर आपका बहुत अच्छा सा अपना क्यूजीन आप एंजॉय करेंगे, तो हमने डिफरेंट 6 फूड ट्रक्स मंगाए हैं हमने।
1: अच्छा,
3: तो वहां पे कोई आपको बॉम्बे का फास्ट फूड भी मिलेगा, फिर आपको यूपी का भी खाना मिलेगा, गुजराती मिलेगा, पंजाबी मिलेगा, दाल मखनी सब कुछ मिलेगा आपको
1: जी।
3: और इवन आइसक्रीम का भी इंतजाम किया है हमने
1: जी।
3: तो पूरा एक मतलब हर तरह का कल्चरल एक्टिविटीज, फुल ऑफ फन एंटरटेनमेंट, और साथ में सारी

0: अच्छे व्यंजन मिलेंगे खाने के लिए, तो बहुत सारी चीजें वहां पे है। फिर आपके बहुत सारे स्टॉल्स हैं वहां पे, वेंडर्स हैं, हमारे स्पॉन्सर्स हैं, तो हमारे कुछ स्पॉन्सर बहुत ही हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे YYC होम केयर है, वीरपाल जी इज डूइंग ए वेरी बिग कंट्रीब्यूशन टू अस एंड वो हमारे एक स्पेशल स्पॉन्सर हैं इस इवेंट की। फिर एक सलील महाजन है, वो रियल्टर हैं, बहुत अच्छे रियल्टर हैं कैलगरी के, उन्होंने सपोर्ट किया है हमें। फिर RBC बैंक में दीप हैं, तो वो मॉर्गेज स्पेशलिस्ट हैं, अमित गुप्ता जी हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन लोगों ने सपोर्ट किया हमें इस इवेंट को, और सारे इंडियन कम्युनिटी के लोग इसमें आ रहे हैं, आगे बढ़ के हमें सपोर्ट कर रहे हैं आके इसमें। और मतलब काफी चीजें हैं, फेस पेंटिंग है, फिर हेना है, और मतलब तरह तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। फिर बहुत सारे आपको आर्टिसन स्टॉल्स मिलेंगे जिसमें कि हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम है, राजस्थानी आइटम है, फिर MP का भी बहुत सारी चीजें हैं आप खरीद सकते हैं वहां पे। फिर आपके जो ऑफर्स तो मिलते ही हैं, जो भी अपने कुछ बिल्डर हैं वो भी वहां पे अपनी लगा रहे हैं स्टॉल्स वहां पे, मॉर्गेज वाले हैं, सब कुछ, तो सारे इंडिया इकट्ठा होगा, कल्चर एक्टिविटी फूड सब कुछ मिलेगा वहां पे।
1: क्या बात है भविष्य जी, मैं एक और बात मानता हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है कि अगर आपके किसी को दिल को जीतना है तो अपना खाना खिलाइए, है कि नहीं कि? तो अगर आपने उनको बढ़िया खाना खिलाया तो दिल से वो इंसान आपका हो जाता है। तो आप जिन्होंने बताया कि काफी सारे फूड स्टॉल्स हैं, लेकिन मेरा ये मानना है जो हमारा अलग अलग प्रांत है, सबका खाना अपना डिफरेंट है, सबका बढ़िया है, तो आप खाने को कहां तक रखते हैं, मतलब कि कैसे वहां पे आप फूड ट्रक्स तो होंगे लेकिन डिफरेंट हमें व्यंजन वहां पर खाने को मिलने वाले हैं, जैसा गौरव जी ने कहा, तो आपके हिसाब से खाने का जो व्यवस्था करने वाले हैं, बच्चों के लिए भी कुछ होगा वहां पर?
0: हाँ जी, पिज्जा वगैरह रहेगा बच्चों के लिए,
1: जी जी,
0: हाँ,
1: जी।
0: फिर आपका वड़ा पाव है, बहुत सारी चीजें हैं, फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे बच्चों के लिए, आइसक्रीम तो है ही, आइसक्रीम फूड ट्रक है पूरा आपका,
1: जी जी, जी
0: तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं समर में, तो एक हम फूड ट्रक लास्ट टाइम भी हमारा था एक पूरा स्पेशल फॉर द बच्चों के लिए, आइसक्रीम वगैरह सब कुछ मिलते हैं वहां पे, मिल्क शेक वगैरह, उसका भी अलग इंतजाम रहेगा पूरा।
1: क्या बात है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया एक प्रोग्राम हमारे लिए इनकी पूरी टीम लेके आ रही है, और मेरे ख्याल से एक ही ऐसा दिन है जहां पे हमें सब कुछ भूलकर अपने गले शिकवे, अपना एक दूसरे के साथ के इसने मुझे घर पे बुला के चाय नहीं पिलाई, ये सब भूलकर हमें सबको इकट्ठा होना है और अपनी आजादी के इस दिन को इकट्ठे होकर मनाना है। यहां पर हमें अपनी यूनिटी, अपना एकपन और सॉलिडरिटी दिखानी है कि कोई भी कुछ भी कहे, हम लोग एक हैं और सदा एक रहेंगे। भाषा, हमारा धर्म, चाहे वो अलग अलग हो, लेकिन हम लोग इकट्ठे मिलकर अपने इस अमेजिंग दिन को, जो कि हमारी स्वतंत्रता दिवस है, उसको हम लोग इकट्ठे होकर मनाएंगे। तो आप दिन याद रखिए, सैटरडे अगस्त 15, टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक। गौरव जी, प्रोग्राम क्या रहेगा, थोड़ा सा टाइमिंग बताएंगे प्लीज?
0: प्रोग्राम भी सर बताता हूँ मैं आपको, और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके व्यूवर्स से
1: जी,
0: कि हमारा फेसबुक पेज है इंडिया फेस्ट
1: जी,
0: उसको लाइक करें और शेयर करें, और बाकी और भी फेलो इंडियंस हैं, बाकी कम्युनिटी मेंबर्स हैं
1: जी,
0: उनको मालूम पड़े, और हमारी वेबसाइट भी है INDIYEAHFEST.CA IndieFest.CA
1: जी,
0: तो उस पे जाएं और पेज जो हमारा पोस्टर इन्फॉर्मेशन मिलेंगी
1: जी।
0: तो हमारा प्रोग्राम सर 11 बजे शुरू होगा वहां पे
1: जी,
0: तो 11 बजे से हमारा फिर झंडारोहण भी है, फिर डिग्नेटरीज आएंगे, और उसके बाद करीब 4 o'clock तक हमारा प्रोग्राम चलेगा वहां पे, 11 से 4 बजे
1: तक का
0: हाँ
1: प्रोग्राम है।
0: हाँ
1: सो दोस्तों, ये प्रोग्राम जो है, अगेन ये मनाया जा रहा है कैलगरी पार्किंग के लॉट 6 में, और इसका एड्रेस है, आप सबको मैं बता दूं, 3118 स्ट्रीट साउथ वेस्ट। अगर आप उस दिन आ रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि गाड़ियां ना लेकर आए, LRT से आए, क्योंकि LRT का ये डाउनटाउन का आखिरी स्टेशन है जहां पर आपको टिकट्स फ्री है, मतलब अगर आप डाउनटाउन में ही चल रहे हैं तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट या किसी भी जगह से आ रहे हैं तो डाउनटाउन का ये आखिरी स्टेशन पड़ता है, और वहां पे उतरकर हार्डली एक ब्लॉक चलना पड़ता है आपको और आप लॉट 6 में पहुंच जाएंगे, और वहां पर आप इस अमेजिंग फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं। सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा, और जैसे ही गौरव जी ने कहा कि इनका जो वेबसाइट है

0: वो है www.indiefest.ca। फेसबुक पेज है इंडी ये फेस्ट, आप उस पे जाकर और जानकारी ले सकते हैं। फोन नंबर अगर आप और इन्फॉर्मेशन लेना चाहें या स्पॉन्सर करना चाहें तो 403-393-9011 पे आप कॉल करें और इस प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानकारी लें। आज 3 तारीख है तो हमारे पास ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हैं, तो अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्लीज प्लीज आप इनसे जरूर बात करें। भावेश जी, आप और क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे आज के इस
1: यार,
0: प्रोग्राम?
1: मैं जैसे बता रहा हूँ कि काफी कमेटियां हमने बनाई है, गौरव जी काफी कमेटी लीड कर रहे हैं, मैं भी 1-2 कमेटी में हूँ
0: जी।
1: सो वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द वर्क। हमारे कल्चरल परफॉर्मर के लिए कोऑर्डिनेटर है, सारे जोन के कोऑर्डिनेटर है। सो एवरी देयर आर सो मेनी वॉलंटियर्स पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट
0: टू
1: ब्रिंग दिस लाइक मेगा इवेंट, राइट? और हर साल ये बड़ा होता जा रहा है।
0: तो
1: एज इंडिया कंप्लीट 79 ईयर एंड वी आर सेलिब्रेटिंग 80th इंडिपेंडेंस डे, रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, ऑल इंडियंस इनसाइड आउटसाइड कैलगरी, प्लीज कम एंड जॉइन अस।
0: क्या बात है साथियों जी, आप क्या और ऐड करना चाहेंगे आज की कन्वर्सेशन में?
2: डेफिनेटली जैसे आप बता रहे थे अभी जी, यू नो ये सैटरडे को आता है 15th ऑफ अगस्त, एक्चुअली लकीली वीकेंड एक्चुअली, तो मैं डेफिनेटली नॉट ओनली इंडियन फैमिलीज, इंडियन डेफिनेटली आएंगे, अपार्ट फ्रॉम इंडियन फैमिलीज इवन वी वुड लाइक टू इनवाइट अदर नेशंस ऑल्सो, प्लीज इट्स ऑन सैटरडे, सब अपनी फैमिली के साथ आइएगा। एंड जैसे गुरु जी तरह थे सुबह से लेकर शाम तक हमने पूरा हर एक का बंदोबस्त किया, जैसे बच्चों का है उनके लिए कुछ यू नो बहुत सारे खेल कूद है, उनके लिए कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स है, उनका खाने के पीने की पूरा व्यवस्था है वहां पे। एंड फैमिलीज का भी आई थिंक दे कैन एंजॉय लॉट विद ऑल आर कल्चरल प्रोग्राम्स, लेकिन वी हैव नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऑल द कल्चरल प्रोग्राम्स इनकॉर्पोरेट टू देयर, सो आप अपनी जो भी भाषा है उनका कल्चरल प्रोग्राम डेफिनेटली वहां पे देख सकते हैं। तो या डेफिनेटली जैसे आई थिंक यू नो ये किसी भी त्योहार जैसे घर में सब लोग मिलके मनाएंगे, तो हम इस त्योहार को भी आपके साथ आपकी परिवार के साथ हम सब मिलके मनाएंगे। तो प्लीज सैटरडे 15th ऑफ अगस्त याद रखिएगा, सुबह 10 से लेके शाम को 4 बजे तक पूरा फैमिली को लेके आइएगा, हम सब मिलके इकट्ठा इस भारत का जो त्योहार है उसको हम सब मिलके मनाएंगे।
0: क्या बात है। तो दोस्तों 15 अगस्त की तैयारी कर लीजिए और इंडिया ये फेस्ट आपके लिए आ रहा है, आप जरूर अपने परिवार के साथ पहुंचें और इस अमेजिंग अमेजिंग इवेंट का हिस्सा बनें और अपने स्वतंत्रता दिवस को अपने भारतीयों के साथ मिलकर बनाएं और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं, क्योंकि हमें सिर्फ दिखता है कि जो हमारे सामने फाइनल प्रोडक्ट आया, लेकिन बहुत मेहनत लगती है सर। आप विश्वास करें कि एक प्रोग्राम को क्रिएट करने में, अभी सिर्फ भावेश जी बोल रहे हैं लेकिन मैं जानता हूं कि कितनी मेहनत से उसमें लगे हुए हैं, अपनी अपनी कमिटीज को लेकर, अपने अपने वॉलंटियर्स को लेकर। तो हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे लिए ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, और उन्हीं सब जितने भी संस्थाएं हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं शुरुआत करूंगा भावेश जी से। भावेश जी, बिफोर वी एंड टुडेज कन्वर्सेशन, क्या संदेश है आपका लोगों के लिए?
1: बस संदेश यही है कि आइए मिलकर इंडिया का 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं साथ में। देयर विल बी लॉट ऑफ परफॉर्मेंसेस, फन इवेंट्स एंड फूड।
0: क्या बात है।
3: हम लोग सर कम से कम 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं और सारे 20 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे और बहुत सारी कमेटीज हैं, सब कोई कल्चरल का है, कोई किसी चीज का है, तो हम रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि बहुत मेहनत लगी है और सब लोग आए और एक साथ यूनिटी को प्रमोट करें, एक साथ मिलके मनाएं। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं जाते हैं हम, क्योंकि आई थिंक कैलगरी में ही ऐसा होता है, मुझे लगता है आई थिंक इतना बड़ा जो होता है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे अनुरोध है, जैसे भी आप आए फैमिली को लेके आए, लास्ट ईयर हमारे करीब 10,000 लोग थे, इस बार वी वांट एटलीस्ट 15,000-20,000 लोग आए, अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं, अच्छे से मनाएं, सारे कम्युनिटी वाले फ्रेंड्स को लेके आए यहाँ पे और हम सबका स्वागत करेंगे वहां पे।
0: क्या बात है साथी जी।
2: डेफिनेटली आई थिंक यू नो सब मिलके आइएगा एंड हम सब मिलके इस त्योहार को डेफिनेटली भारी धूमधाम से मनाएंगे। एंड भारत का जो ये 15 अगस्त जो है, सभी भारतवासियों को यू नो हार्दिक अभिनंदन एंड हम सब मिलके उस दिन काफी जोरदार से धूमधाम से मनाएंगे इसको।
0: क्या बात है। सो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी अगस्त 15 सैटरडे 11 बजे से लेके 4 बजे तक, आप जरूर पहुंचें और इस अमेजिंग अमेजिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने।
3: एंड शुक्रिया आपको हमारे मीडिया पार्टनर बनने के लिए, हमें मौका देने के लिए। आप लंदन में थे तब हमारी बात हुई, मैंने कहा

0: आपको मतलब इतना इंडिया से लगाव है, आपने कहा कि नहीं मैं जरूर आऊंगा, सबसे पहले पहला इंटरव्यू हम आपके साथ ही कर रहे हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत गर्व महसूस होता है। हाँ। क्योंकि अगेन हम लोग जहां मर्जी रहें, एज मैंने कहा कि हम हिंदुस्तान से बाहर आते हैं तो हमें लोग इंडियन ही बोलते हैं, हमें कोई भी हमारी भाषा या हमारे स्टेट के नाम से नहीं जानता है, हमें इंडियन एक भारतीय हमें माना जाता है, तो ये बहुत गौरव की बात है। एंड थैंक यू फॉर एटलीस्ट यू नो थिंकिंग अबाउट अस, अबाउट आवर मीडिया टू बी पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग अमेजिंग इवेंट। सो दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जाइए कहीं नहीं, और इन्फॉर्मेशन है इस प्रोग्राम में, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं रेडियो सुरसंगम ओनली ऑन 94.7 FM पर।
2: इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फिर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नु फिर नहीं मिल होना दो दिन।
3: ओहो रह गए ना फिर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लब्भो, ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
4: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो, हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया।
5: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी, हिंदी, उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो, गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला फटा शोरूम। सब दा माण, सब दी चाहत, अपनी सुपनमई कार खरीदन लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 4039036757।
4: मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स।

0: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8257600983 ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
1: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया। कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी हिंदी उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम। सब दा माण सब दी चाहत अपनी सुपनमई कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 4039036757। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स। कैलगरी वासियों की तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो खुद फिकर छड़ो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार ओएसिस स्माइल मेडिकल। सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन। चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी इत्थे सारियां लई सुविधावां मौजूद हन। अपॉइंटमेंट नहीं बनी कोई चक्कर ही नहीं सिद्धे चले आओ इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है। नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम। फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ। असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ वी देर शाम तक। ता देर किस गल दी अज ही डायल करो 5876174696 587-617-4696। ओएसिस स्माइल मेडिकल तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी 5876174696।
2: दोस्तों एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज में। आप सुन रहे हैं रेडियो सुर संगम ओनली ऑन 94.7 FM पर। आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं ये वाला प्रोग्राम आपकी आवाज हर मंडे 8 से 9 बजे और मैं आपका होस्ट आपका दोस्त अमृत बरार एक बार फिर से अपने इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हमने पहले अपने हाफ एन आवर में बात करी इंडिया ये फेस्टिवल की जो कि मनाया जा रहा है 15 अगस्त को। अगेन 15 अगस्त एक ऐसा दिन जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली और ब्रिटिश राज खत्म हुआ और हमारे साथ जुड़े थे इंडिया ये फेस्टिवल की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके कुछ लोग। ये प्रोग्राम सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इसको टाइम लिमिट अगर आपके पास टाइम नहीं है सुबह से 11 से लेकर 4 बजे तक लेकिन ये एक ऐसा दिन है कि जिसमें फेस्टिविटीज पूरे दिन मनाई जा रही हैं। वी आर सो लकी टू हैव सच अमेजिंग अमेजिंग पीपल अराउंड अस। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस दिन को पूरा दिन मनाएंगी सुबह से लेकर शाम तक। तो एक ऐसी और संस्था है इंडियंस इन कैलगरी जो कि ये प्रोग्राम आपके लिए या ये जो स्वतंत्रता दिवस का जो हमारा इसको हम एज अ त्योहार की तरह मनाने जा रहे हैं उसका प्रोग्राम एक शाम को भी होने जा रहा है जो कि होगा नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में। और हमारे साथ जुड़े हैं सैयद भाई और अनुराधा जी इंडियंस इन कैलगरी की तरफ से जो कि हमें बताएंगे कि इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है और कहां पे और क्या रूपरेखा इस प्रोग्राम की रहेगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में।
3: थैंक यू अमृत जी। थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर।
2: आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं ये कहना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो और आपने हमें यह मौका दिया कि आपकी बात जो है हम अपने लिस्टर्स तक पहुंचा सकें। तो शुरू करेंगे अनुराधा जी से। अनुराधा जी थोड़ी सी नर्वस लग रही हैं। अनुराधा जी बिल्कुल चिंता मत करें, आपसे मैं कोई ऐसा कठिन सवाल नहीं पूछूंगा जिसका आंसर आपको ना आता हो। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप इंडियंस इन गैलगरी के साथ कब से जुड़ी हुई हैं?
4: It's been many years.
2: जी
4: जी, उसके साथ हमने इवेंट्स करने स्टार्ट किए थे
2: जी।
4: जब से तब से मैं इनके साथ हूँ।
2: क्या बात है। और एज अ वॉलंटियर ही आप काम करती हैं?
4: हाँ जी,
2: क्योंकि ये संस्थाएं जो हैं वो आप जैसे लोगों के बगैर नहीं चल सकती हैं। आप जैसे लोग सैयद भाई जैसे लोग जो कि अपने वॉलंटियर आवर्स इन संस्थाओं को देते हैं क्योंकि तभी जाकर कोई भी संस्था कामयाब होती है जब उनके पास कोई अच्छी टीम हो। तो इट्स वेरी मच

0: नेसेसरी कि आप जैसे लोग टीम के साथ जुड़ें और अपना टाइम देकर उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्ट्रांग करें. तो ये आपका कौन सा ईयर होगा इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने का?
1: इंडिपेंडेंस डे एक्चुअली हम अलग से अभी शाम को फर्स्ट टाइम ही करने जा रहे हैं.
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तो ये प्रोग्राम कहाँ पर होने जा रहा है?
1: जेनेसिस सेंटर में. हाँ जी, पार्किंग साउथ पार्किंग लॉट में शाम को 6 to 8.
0: वाह जी वाह.
1: इट्स गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट एंड स्वीट प्रोग्राम.
0: जी जी जी जी जी, साउथ पार्किंग लॉट. तो सैयद भाई, शाम को 6 to 8 आप ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो क्या स्पेशल है इस प्रोग्राम में? क्योंकि अभी जैसे ये फेस्टिवल की बात हुई तो 15 अगस्त को वहां पर 11 से 4 मनाया जा रहा है, और आई बिलीव कि जो लोग उसको मिस करते हैं इन केस, तो आप लोग हैं उसको कंटिन्यू करने के लिए, राइट? तो क्या होगा सैयद भाई इस प्रोग्राम में?
2: हम लोग एक्चुअली इस तरीके से प्रोग्राम रख रहे हैं कि कल्चरल इवेंट्स इसके अंदर होंगे.
0: अच्छा.
2: जिसमें बच्चे बड़े सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, अपने अपने स्किल्स अपने टैलेंट्स को जो है दे कैन प्रेजेंटेड. हम उनको जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं
0: जी.
2: अलॉन्ग विद दैट अगेन, क्योंकि ये इतना लंबा नहीं है तो उतना लंबा करेंगे भी नहीं हम लोग
0: जी,
2: उसको
0: जी, जी.
2: आपको उसके साथ ही साथ स्नैक्स ड्रिंक्स ये चीज जो है ना अवेलेबल रहेंगे, सब लोग को रिफ्रेशमेंट्स रहेंगे वहां.
0: क्या बात है. तो अगर हम बात करें कल्चरल प्रोग्राम्स की, और वो मैंने पिछले प्रोग्राम अपने फर्स्ट हाफ में ही बात करी, हमारे भारत देश में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जबकि 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस नौराजी हमारे इंडिया में बोली जाती हैं, उसके बाद डिफरेंट डायलैक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन हमारे को सिर्फ एक चीज जोड़ती है, वो है हमारी अपनी यूनिटी, अपना जिसको हम कहते हैं कि हम लोग भारतीय हैं. इररिस्पेक्टिव हम किसी भी प्रांत से हों, किसी भी स्टेट से हों, कोई भी भाषा बोलते हों, कोई भी धर्म को मानते हों, लेकिन बीइंग इंडियन इज वन ऑफ द मेजर हमारी जो लाइफ है वो उसके इर्द गिर्द घूमती है. तो अनुराधा जी, इसके प्रोग्राम में अगर आप थोड़ा सा बता पाए कि कौन कौन सी डिफरेंट डांसेस हमें देखने को मिलेंगे या कल्चर प्रोग्राम्स, अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें.
1: हाँ, साउथ इंडियन डांस भी होगा, भरतनाट्यम भी हो सकता है, थोड़ा बच्चों का भी होगा, पियानो भी होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट उनको नजर आएंगी चीजें.
0: क्या बात है. और सैयद भाई, आपने बोला खाने के कुछ चीजें आपने अभी बताया, और मेरा मानना यह है कि अगर किसी के दिल तक पहुंचना है तो खाने का रास्ता पेट से ही होता है, राइट? दिल का रास्ता पेट से है, और आई थिंक खाना जो है किसी भी हमारे किसी भी प्रांत में चले जाए, सबका अपना डिफरेंट और यूनिक खाना है. तो यहाँ पर किस तरह के खाने मिलने वाले हैं हमें?
2: मैं कम्प्लीटली सारी लिस्ट तो नहीं डिस्क्लोज करूंगा,
0: बट
2: ये जरूर बोलूंगा कि यहाँ आने के बाद में आई थिंक कनाडा में हर इंडियन समोसा जरूर खाएगा.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो सुबह का टाइम हो शाम का टाइम हो, समोसा तो बहुत जरूरी है.
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको बेहतरीन समोसा आपको जरूर मिलेगा.
0: क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों है कि सिर्फ वेजिटेरियन का ही हमारा इंतजाम?
1: ओनली
0: वेजिटेरियन, क्योंकि यूं को कई बार थोड़ा सा ये होता है कि यार वहां पर किस तरह का फूड होगा. तो दोस्तों, वेजिटेरियन फूड वहां पर आपको मिलेगा, और जैसे कि आपने सुना अभी सैयद भाई से कि समोसा और चाय अगर हुई तो चाय जरूर वहां पर मिली जाएगी, लेकिन मेन चीज खाना अगेन एक माध्यम है जुड़ने का, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी प्रेजेंस वहां पर, हमारी प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही एक ऐसा दिन है पूरे भारत देश में जो कि हमें इकट्ठा करता है. हम एक झंडे के नीचे खड़े होकर उस दिन को मनाते हैं जिस दिन हमें स्वतंत्रता मिली, इंडिपेंडेंस मिली और हमारा देश आजाद हुआ. ये एक बहुत बड़ी बात है. अनुराधा जी, कितने साल हो गए आपको कनाडा में?
1: 22 years.
0: तो जब आप यहाँ आई तो मिस तो करती होंगी अपने देश को?
1: बहुत.
0: लेकिन अगर आपने देखा हो पिछले 22 साल से अगर हम बात करें कैलगरी की
1: जी.
0: तो बहुत सारे चेंजेस आए,
1: बहुत सारे. इट्स टोटली अपसाइड डाउनसाइड
0: अप हो गया है ना. लेकिन अब हमें लगता है, टू वेरी ऑनेस्ट, मैं भी पहले बहुत अपने देश को मिस करता था कि यार ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत कुछ यहाँ पर बदलाव आया है
1: जी।
0: और हमें ऐसा लगता है कि हमारा देश दूर नहीं है।
1: हाँ, बिल्कुल।

0: सेहत में लगता था कि यार कहाँ कितने हजारों किलोमीटर दूर आ गए, ये मिस कर रहे हैं वो मिस कर रहे हैं। अब तो हमें इंटरनेट की वजह से और टीवी और वो अब सास भी कभी बहुत ही हमें यहाँ देखने को मिल जाता है, तो इसलिए हमारे को वो चीजें मिस नहीं होती जो हम वहां मिस करते थे। और सबसे ज्यादा खाना
1: जी।
0: और हमारी चीजें जो हमें वहां मिलती थी वो यहाँ नहीं मिल पाती थी, अब वो बहुत मुहैया हो गई हैं। सांझा पंजाब जैसे बहुत सारे हमारे स्टोर्स खुल गए हैं जो हर चीज हमें यहाँ पर मिलते हैं, हमारे मसाले से लेकर जो भी हम खाना चाहें यहाँ मिल जाती हैं। हमारे मंदिर गुरुद्वारे मस्जिदें बहुत हो गई हैं, हमें उस चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम कहाँ जाके इबादत करें या पूजा करें, राइट। तो ये सब चीजें जब चेंज होता है तो एक चीज जो मुझे लगती है वो चेंज होती है कि आपका स्वभाव, आप अपने देश को मिस तो करते हैं लेकिन एटलीस्ट यहां रहकर आप कोशिश ये करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें कि हमारे देश का नाम ऊपर जाए। और मेरे ख्याल से आप लोगों की संस्था जो है ये इसको आगे बढ़ा रही है, आप बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं जो कि हमारे देश का नाम ऊपर लेके जाते हैं, एंड वी आर सो ग्रेटफुल। और मनीष जी का और आपका बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद है कि आप पूरी मेहनत से इस दिन को जो कि बहुत स्पेशल दिन है उसको बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो सैयद भाई और क्या ऐड करना चाहेंगे आप इस कन्वर्सेशन में?
2: मैं बस ये चीज बोलूंगा कि अगेन इंडियंस इन कैलगरी इज नॉट जस्ट अबाउट दिस इंडिपेंडेंस डे, हम लोग काफी सारे प्रोग्राम्स इनिशिएटिव्स करते हैं
0: जी,
2: स्पेशली जिसमें हमारे पास गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम्स है, वहां पर दिवाली भी करते हैं, होली सेलिब्रेशंस भी कुछ महीने पहले काफी बेहतरीन हुई है
0: जी।
2: उसके साथ ही साथ हमारे पास बिजनेस नेटवर्किंग के लिए थ्राइव करके हम बिजनेस नेटवर्किंग भी चलाते हैं।
0: अच्छा।
2: जिसमें इनिशिएटिव इज अबाउट सारे जो बिजनेसेस हैं यहाँ पर उनको जो है हम कोशिश करते हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको नेटवर्किंग का मौका मिले, चाहे आपको अपना बिजनेस ही एडवर्टाइज करना है, आपको you know, चाहे क्लाइंट्स लेने हैं, चाहे अपने आपको एक्सपोजर देना है, वॉट एवर यू लाइक, यू नो इंडियंस इन कैलगरी। अभी अनुराधा जी ने बहुत अच्छा बोला कि यू नो यू गिव समथिंग यू गेट समथिंग, यू नो वेरी मच लाइक दैट। हम कोशिश करते हैं कि सभी को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकें।
0: सर भाई मेन चीज प्लेटफॉर्म की ही होती है। देखिए मैं एक बहुत बढ़िया बाथरूम सिंगर हूं और गाने बहुत अच्छे गाता हूं, लेकिन अगर मेरा आगे बढ़ने का मन है तो जब तक मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं होगा मैं आगे नहीं जा सकता। और ये संस्थाएं, आप जैसी संस्थाएं ही हैं जो कि इस तरह के प्लेटफॉर्म देती हैं आगे बढ़ने के लिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप आर्टिस्ट हो, चाहे आप गाना गाते हो या आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, लेकिन जब तक हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा हम उसको आगे नहीं लेके आ सकते। सो वी आर सो थैंकफुल यू नो एज अ सिटीजन कि आप लोग इतनी मेहनत से ये प्रोग्राम्स इनिशिएट करते हैं और पूरी मेहनत से इसको आगे लेकर आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि प्लेटफॉर्म तो हो गया, बिजनेस नेटवर्किंग हो गई, बच्चों के लिए कोई स्पेशल चीज होने वाली है वहां पर?
2: राइट नाउ इन दिस प्रोग्राम हम कोशिश कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द वेदर बच्चों के लिए हम प्ले एरिया जैसा रख सके
0: बिल्कुल,
2: क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत गर्मी हो जा रही है, बहुत सारी चीजें जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं
0: जी, जी,
2: तो वी आर ट्राइंग फॉर दैट। जैसा मौसम रहेगा तो कोशिश जरूर रहेगी कि उनके लिए भी एक प्ले एरिया वगैरह का इंतजाम हो जाए
0: जी।
2: तो यस दैट इज देयर फॉर श्योर।
0: क्या बात है। सो दोस्तों ये एक सेलिब्रेशन आप कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूस सेलिब्रेट अगर आप करना चाहते हैं इंडिपेंडेंस डे को, तो आपके लिए अगर आप किसी वजह से नहीं पहुंच पाते हैं हमारे डाउनटाउन इंडिया ये फेस्टिवल में, तो नॉर्थ ईस्ट में जेनेसिस सेंटर जो कि बहुत सेंट्रलाइज्ड प्लेस है, बस कार ट्रेन सब से आप वहां पहुंच सकते हैं, और मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो हमारे इंडियंस हैं वो नॉर्थ ईस्ट पे ही रहते हैं तो आपको पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वहां पर शाम को 6 से लेकर 8 बजे तक ये प्रोग्राम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होने वाली हैं जो कि मनाया जा रहा है इंडियंस इन कैलगरी की तरफ से। आप जरूर पहुंचें और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं, बिकॉज अगेन हमें एक ही ऐसा दिन है जहां पर हमें इकट्ठे होकर इस दिन को मनाना चाहिए, इरिस्पेक्टिव कोई भी आप धर्म को मानते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, लेकिन आप वहां जरूर पहुंचकर इसको कामयाब बनाएं। तो अनुराधा जी सैयद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपने हमें बहुत बढ़िया जानकारी दी। अगेन ये जानकारी फेसबुक पे भी होगी और इसको हम डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर

0: करेंगे ताकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके. बिफोर वी एंड टुडेज कन्वर्सेशन, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अनुराधा जी, आपसे शुरू करता हूँ.
1: हमारे पास लड़कियों के लिए भी हमने स्कॉलरशिप शुरू किया है.
0: अच्छा.
1: या तो हम दो बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं हर साल.
0: क्या बात है.
1: या तो मतलब वी आर जस्ट ट्राइंग टू टच एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स.
0: जी जी.
1: एजुकेशन भी है, क्रिकेट भी है, बिजनेसेस भी है, और बच्चों कल्चर प्रोग्राम्स भी हैं. और अभी हमारा गणेश चतुर्थी आ रहा है 19 सितंबर को.
0: जी.
1: उसके बाद गरबा आएगा 16 अक्टूबर, एंड उसके बाद हमारी आएगी दिवाली. सो वी आर इनवाइटिंग एवरीबडी टू ऑल द प्रोग्राम्स, एंड मोस्ट ऑफ आवर प्रोग्राम्स आर फ्री.
0: आप ये देखिए अनुराधा जी के पूरे साल सैयद भाई हम लोग लगे रहे, हमारे जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं वो खत्म नहीं होती.
1: जी.
0: आप किसी भी आप शुरू से जनवरी से लेकर आप दिसंबर तक आ जाएं, अगर ये मौसम हमारा साथ देता रहे तो हम तो हर महीने कुछ ना कुछ बनाते हैं. कोई ना कोई अपना ईद हो, दिवाली हो, अपना अपने जितने भी गणेश चतुर्थी हो, कुछ भी होली हो, हम कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते ही रहते हैं. नहीं नहीं, बहुत बढ़िया. सैयद भाई, आप क्या ऐड करना चाहेंगे बिफोर वी एंड टुडेज़ प्रोग्राम?
2: राधा जी ने काफी कुछ कवर कर लिया है. मैं बस एक चीज के ऊपर फोकस करता हूँ, क्रिकेट.
0: अच्छा.
2: क्रिकेट जो है हमारे पास इंडियंस एंड कैलगरी की टीम है.
0: क्या बात.
2: जो प्रोफेशनल लेवल पर यहाँ पर लीग्स में खेलती है.
0: अच्छा.
2: सीसीसीएस लीग के अंदर सिल्वर में हम खेल रहे हैं. इस बार
0: क्या बात.
2: पिछले 3 साल से खेल रहे हैं. अगेन आई यू नो आई एनकरेज एवरीबडी टू कम प्ले. मैं पिछले लास्ट ईयर से मैंने भी इनको क्रिकेट में भी ज्वाइन किया. कोशिश करते हैं, अगेन इट्स नॉट अबाउट के बींग ए गुड प्लेयर और ए ग्रेट प्लेयर. हमको एक क्रिकेट फैमिली मिलती है, हमको थोड़ा सा स्ट्रेस से हम दूर होते हैं, गेम से कनेक्ट करते हैं. दीज आर द थिंग्स विच आई थिंक हम सबकॉन्शियसली हम फोकस नहीं करते हैं, बट वी स्टिल मिस आउट. तो अगर हम गेम की तरफ भी अगर अपने आप को रखेंगे, फिटनेस है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें जो आप एक्चुअली गेन करते हैं क्रिकेट में इन्वॉल्व होकर. तो आई विल एनकरेज एवरीबडी टू कम ज्वाइन इंडियंस एंड कैलगरी क्रिकेट टीम एज वेल.
0: क्या बात है. तो दोस्तों, किसी भी स्पोर्ट को आप करें तो वो आपको डेफिनेटली उसके बहुत एडवांटेजेस होते हैं, और क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो हमारे लिए रिलीजन है. कोई उसमें छुपी हुई बात नहीं है. हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये 4 तो ऐसे देश हैं जहां पे मैं कह सकता हूं आंखें बंद करके कि हम लोग खाना भूल सकते हैं, लेकिन क्रिकेट नहीं भूल सकते. बच्चा चलना बाद में लगता है, पहले उसके हाथ में क्रिकेट बैट होता है, ये हमारे देश में मानना है. तो अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो प्लीज सैयद भाई की बात को सुने और जरूर उनसे कॉन्टेक्ट करें. कोई फोन नंबर या कोई ईमेल अगर आप देना चाहें, आपकी वेबसाइट हो
1: जी. हाँ जी, indiansincalgary.org इज अ वेबसाइट.
0: अच्छा.
1: हाँ जी, और ईमेल एड्रेस है info@indiansincalgary.org.
0: जी.
1: और फोन नंबर मैं अपना दे सकती हूँ, 587-606-4015.
0: जी, बहुत बढ़िया. दोस्तों, अगर आप ये मिस कर गए हैं तो फेसबुक, आप अगर आप फॉलो करते हैं तो अमृत बरार के फेसबुक पे आप जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे ले सकते हैं. सैयद भाई, अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप आए हमारे स्टूडियो में और इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपने दी. तो दोस्तों, अगेन इंडियंस इन कैलगरी सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th August एट जेनेसिस सेंटर फ्रॉम 6 PM टू 8 PM. साउथ पार्किंग लॉट में आप पहुंच के इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और फेस्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें. आपसे मुलाकात होती है अगले सोमवार. तब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें. आज का प्रोग्राम एम्पावर करते हैं YYC होम केयर सर्विसेज. वीरपाल जी और उनकी टीम आपके लिए हमेशा तैयार. आप अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके बुजुर्गों के लिए तो आप उनसे संपर्क करें 8257600983 पर. उनका मानना है केयरिंग फॉर यू राइट एट होम. तो आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते. तब तक अपना ध्यान रखें and good night.
3: कनाडा विच रहंदिया इंश्योरेंस की बहुत अहमियत है. किसी भी तरह की इंश्योरेंस ले पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो. सुपर वीजा, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, RESP दिया वधिया सेवावां ले पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू. ए इंश्योरेंस ले नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन. होर जानकारी ले पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो.
4: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो.

0: FM रेडियो सुरसंगम हर हफ्ते वी घंटे सुनो मंडे टू फ्राइडे शाम 4 टू 5 कुलदीप सिंह विचार चर्चा शाम 8 टू 9 जितेंद्र पन्नू रेडियो सुरसंगम .ca फोन 403-585-0910 रेडियो सुरसंगम
1: The following program speaks to the South Asian community uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio the multicultural spirit of Calgary CHKF 94.7

0: मानस पहुजा ते उन्हां दी टीम प्रोफेशनल सेवावां दिंदे हन। बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस 5878321208।
1: बड़े सोचा च पए हो वीर जी, की गल होगी?
0: थक गए हैं घर लब लब के, कैलगरी च घर खरीदना तो हुन बड़ा ही औखा।
1: तुसी घर चंद्रमा ते लब दे होने, कैलगरी च नहीं। आ नोट करो नंबर अरुण कौशल दा।
0: कर लिया जी नोट, फोन नंबर 403-618-2112।
1: रियल एस्टेट दे सब मसलियां दा हल करनगे प्रेप रियलिटी दे मशहूर रियलटर अरुण कौशल।
0: अच्छा जी, अरुण कौशल लब के देणगे सानू घर?
1: जी हां, कल्ले घर नहीं, प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल होवे जां कमर्शियल, घर खरीदना होवे जां बेचना, प्रेप रियलिटी दी वड्डी टीम तो ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ। ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 403-618-2112। ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ। मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो? हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया। कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी, हिंदी, उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो, गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम। सब दा माण, सब दी चाहत, अपनी सुपनमई कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 403-903-6757। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स।
0: ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ।
2: ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ।
0: ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਸੀ।
2: ਲੈ ਦੱਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਤੇ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ 403-607-4408।
0: ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਗਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਰਵਿਸ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ 403-607-4208। ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ।
3: ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੀ ਨੂੰ, ਬਸ ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਲਈ ਜਾਇਓ। ਵੀਰੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਟੋਰੰਟੋ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ।
4: ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ ਰਿਐਲਟਰ ਜੱਗੀ ਤੇ ਲੋਹਰਾ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ।
3: ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਕਸਵੈਲ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਐਲਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 403-616-2445।
5: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलिया।
6: की होया?
5: बस पूछ ना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन।
6: ओहो, रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
2: हेलो गोपी, शुक्र है तू फोन चुक लिया। जिद्दण दा नवा घर लिया, सज्जन मित्र फोन चुकनो भी गए।
0: ओ सारे डरदे नहीं चकदे, उनां नूं लगदा तू मूविंग ली कहूंगा, कौन इन्ने भारे समान नूं हाथ पावे।
2: ओ नहीं भरावा, मैं इंज नहीं करदा। आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं इक फोन करीदा, ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसे झंझट दे मूव कर जांदे आ।
7: अपने घर जां ऑफिस दा समान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नूं अज ही कॉल करो 4038701790 403-870-1790। स्टार मूविंग।